0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स। वेल, हमारे ट्रायंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट, द एनसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across east coast. बजाने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देखिए, पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morrisville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Racha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसास, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायडा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी ट्री एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शो केसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देसी, पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायडा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson Ave. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल हमार ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैन द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द एनसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sports fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. Bazaar wala hai Miss Mukherjee ke liye zara enjoy kariye filhal ke.
1: Radio Nara 101.9 FM 99.9 FM.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाएगा, पता देसी पता लोकल।
2: AI powered personal music teacher from Saregama.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी4 4090 एएम 99.9 एफएम एचडी3 तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: is the Mount Dal Gaadi Ke Baad. One more time, welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk.
1: ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट विक्स बोरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स बोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. सी द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक्स रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स बोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka deshi, pakka local.
2: Yaari hai machine se, ure chahe aasmaan mein, dil hai zameen pe.

गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्राइंगल में रेडियो नायरा और चेरिस्ट मूवमेंट प्रेजेंट कर रहा है कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा म्यूजिकल सेलिब्रेशन। भक्ति की वाइब, म्यूजिक की एनर्जी और सेलिब्रेशन का धमाकेदार संगम। इस कृष्ण जन्माष्टमी तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जहां होगा डिवोशनल म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लाइव भजन की डिवाइन फीलिंग, एजे द डीजे के साथ मॉडर्न क्लबिंग बीट, भक्ति में डांस, म्यूजिक में मैडनेस। इंडियन एथनिक ड्रेस में आइए और बनाइए इस शाम को और भी स्पेशल। फूड एंड ड्रिंक्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आइए और मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भजन क्लबिंग। भक्ति की गहराई, म्यूजिक की एनर्जी और सेलिब्रेशन का परफेक्ट संगम ऑन 5th September सैटरडे 2026 7 PM टू 11 PM होकी एंटरटेनमेंट कैरी नॉर्थ कैरोलाइना। अर्ली बर्ड टिकट सिर्फ $20 से शुरू। और सबसे खास बात, पार्ट ऑफ द प्रोसिट्स विल गो टू द राधा कृष्ण टेम्पल। वन रिदम वन हार्ट एवरीवन इज वेलकम। वेल बहुत मजा आने वाला है इस कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में, इसीलिए मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइए, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज जूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: लुकिंग फॉर द परफेक्ट समर फैमिली नाइट आउट? जॉइन द नॉर्थ कैरोलिना करेज ऑन वेडनेसडे ऑगस्ट 26th एट 8 p.m. एज दे टेक ऑन एंजल सिटी FC. Featuring U.S. Women's National Team star Gisele Thompson. It's professional women's soccer at its best. Non-stop action on the field, plus family-friendly fun and entertainment before and during the game. And with no ticket fees, free parking, and affordable prices, it's the easiest night out you'll plan all summer. Get your tickets now at tickets.nccourage.com. See you August 26th.
2: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi Pakka Local.
1: गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एलजी4, 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एलजी34 तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल्स एंड डॉट्स.
2: वेल हमारा ट्रायंगल वी स्टेपिंग इनटू द क्राफ्ट समर इन सी ग्रुप सेलिब्रेट होने वाला है. Each weekend in July, Potter and Studios will have several events taking place for the great experience in Sea Grove area. From clean opening demonstration and some hands-on experience in clay, we hope you will plan your visit and first-hand look at the process of making pottery. Some pottery studios may require a reservation to be included in the activities, so you will need to work directly with each site individually. We look forward to visit. मजा आने वाला है. जिनको सच में इंटरेस्ट है पॉटरी में जरूर विजिट कीजिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोरिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for तेलुगु। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉर्निंग।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: लुकिंग

सुबह गाना बजे लगे सुबह सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: कहूंगा कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास. दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप.
1: डू यू डिजायर फॉर कंटेम्पररी एंड क्लासिक ज्वेलरी डिजाइंस टू फिट एवरी ओकेजन? खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स हैज यू कवर्ड फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स. वी क्राफ्ट द प्योरेस्ट 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डैजलिंग डायमंड्स ज्वेलरी विद टॉप क्वालिटी एंड फिनिश. वी ऑफर बेस्ट वैल्यू इन jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.
2: Triangle, are you ready? For the first time in Raliduram, Radio Naira and Cherished Moments proudly present Bhajan Clubbing, a Krishna Janmashtami special where devotion meets the beat and brings generation together. Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983. Or email info@radionaira.com. Bhajan Clubbing, one rhythm, one heart, one divine celebration.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: छत पक्षियां रंगादी तुप बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया
1: ओ दोनों को ही चाहत

चारकोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माण नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रहा है आपका आज का मंडे ब्लूज एंड मंडे की इवनिंग कैसे चल रही है? मतलब वीकेंड के बाद मंडे काम करना, इट्स नॉट दैट मच ईजी टास्क। लेकिन अगर आपसे सोचते हैं कि यस मुझे ये करना है अच्छे से एंड आप कर पाते हैं, मोटिवेशन रखना है, दैट्स वाई तो नाम दिया है मंडे। अगर आप मोटिवेटेड होके काम करते हैं तो काम करने में मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आप बस यही सोचेंगे अरे यार ये मंडे क्यों आता है तो काम कैसे होगा, एनर्जेटिक रहने के लिए अपने आप से मोटिवेशन लेते रहना चाहिए। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, प्ले करने जा रहा हूँ इस ब्यूटीफुल शाम का पहला गाना सिर्फ आप लोगों के लिए। रेडियो नायरा, पक्का देसी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपकी मूड को रिफ्रेश। एंड बात करते हैं कुछ लोकल खबरों के बारे में। तो पहली लोकल खबर यह है कि हैरिस टीटर नाम की बड़ी ग्रोसरी कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो अपना कुछ काम अब भारत आउटसोर्स करने जा रहा है। एंड इस फैसले के बाद लोकल स्तर पर हज़ारों नौकरियों पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। आप इस बात पर कह सकते हैं कि आईटी और बैक ऑफिस के काम के लिए भारत अभी भी बड़ी कंपनियों की पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन इससे लोकल जॉब्स पर असर ज़रूर पड़ता है, पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? आप मुझे बता सकते हैं। एंड एन्जॉय करते हैं फ़िलहाल ये अगला गाना।

वन ऑफ नाइट्स, मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। एंड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली संस्था एनसी आइडिया के माइक्रो और सीड ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख आज ही 24 अगस्त है। इसके साथ ही आज आरडीपी में खेती और फसलों को बेहतरीन बनाने के लिए एआई, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, एआई और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक बड़ा इवेंट भी होने वाला है। आरडीपी हमेशा से ही नई टेक्नोलॉजी का गढ़ रहा है और अब यहाँ खेती बाड़ी में एआई, यू कैन इमेजिन, एआई का यूज़ होने वाला है एंड ये जो है वो बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।

0: एंजॉय किया आपने ये गाना, एंड गाना था वाकई में इतना कमाल का कि जिसने मंडे की भी वाइब जो है वो सेट कर रही है। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना नाइट्स, रैली के मशहूर शॉपिंग सेंटर प्लेजेंट वैली प्रोमेंडेट को गिराने का काम शुरू हो गया है। यह अब नया और बड़ा ग्रोसरी स्टोर और मॉडर्न बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग जो है वो चल रही है। मतलब ऐसा है यार, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी आप अपग्रेड नहीं करोगे तो कैसे होगा। लाइक सब चीज़ें अपग्रेड हो रही है, लाइक बहुत सारी चीज़ें AI पे शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर पुराने लाइक ट्रेडिशनल वे के हिसाब से काम करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई ये जो है प्लेस बन रही है, ये बनना काफ़ी ज़रूरी था। ट्रायंगल एरिया में पुराने मॉल्स और सेंटर्स को तोड़कर नए ढंग से जो है वो कमर्शियल स्पेस विकसित किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं अगला गाना।
1: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,